0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
3: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: जनता केवल 5 दशक देखी
1: रेडियो भेरी एफएम, रेडियो भेरी एफएम,
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्से 2.7 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Fragrance。
1: एप्रिलिया संगै
2: प्रत्येक वेस्पा वा अप्रिलिया को खरीद में स्क्रैच मार्फत रु 1,00,000 सम्म को कैश र ऑनर को X5 प्लेन स्मार्ट वॉच पक्का उपहार नागरिकता को भर में फाइनेंस र एक्सचेंज सहित को 0% सर्विस चार्ज आज आउनुहोस् श्रीनाथ सप्लायर्स में लोकेशन जुमला रोड स्व होटल को छेव में सुर्खेत संपर्क 9801328807 9801328807 दशैंको दक्षिणा तपाईको नजिकैको शोरूम में
3: दसैं आयो खुशी ल्यायो हायर को खुशी को पल योजना
4: अब हायर रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन एसी वा चेस्ट फ्रीजर खरीद गर्दा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार
3: सिंगल डोर फ्रिज मा ड्राई आयरन डबल डोर मा मिक्सर ग्राइंडर अनि साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर मा फूड प्रोसेसर शॉर्ट शॉर्ट उपहार
4: फ्रंट लोड वाशिंग मशीन मा इन्फ्रारेड कुकटप अनि इन्भर्टर एसी मा निशुल्क इन्स्टलेसन सुविधा पनि
3: 0% ब्याज मा किस्ताबन्दी सुविधा पनि छ हायर सँग खुशीको पल सजाऊ हरेक घर हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज

0: जनता केबल 5 दशक देखी
1: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्से 2.7 मेगाहर्ट्ज़।